0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज है 25 जून 2026 की शाम, घड़ी में 5 बज चुके हैं और वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों और अहम अपडेट्स पर नज़र डालने का. मैं हूं आपकी होस्ट भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईहुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के हर कोने से SBS हिंदी सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार. आप सुन रहे हैं एक और नया, ताज़ा और बेहद खास शो जहां होंगी बड़ी खबरें, गहरी बातें और समुदाय की असली आवाज. सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया की हलचल पर. अमेरिका में सीनेट में वॉर पावर बिल्स पास हो गया है जिसके बाद अब ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. इसी पर आज एक खास रिपोर्ट आप तक लेकर आऊंगी. दोस्तों, लुई इंस्टीट्यूट के नए सर्वे में एक अहम सवाल खड़ा किया है. क्या ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चरलिज्म के समर्थन में कमी आ रही है या नहीं? इसी को समझने के लिए हमने बात की कृष्ण देव सिंह रावल जी से जो थर्ड कल्चर ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक हैं, एक ऐसी संस्था जो एंटी रेसिज्म वर्कशॉप्स के जरिए समाज में समझ और सुझाव बढ़ाने का काम करती है. आखिर इस बदलाव के पीछे क्या वजह हैं ये भी जानेंगे आज के कार्यक्रम में. और इसके बाद आज आपको लेके जाऊंगी मेलबर्न की रचनात्मक दुनिया में जहाँ रंगमंच सिर्फ मंच नहीं एक एक्सपीरियंस यानी अनुभव है. नाट्य दर्पण इंडियन थिएटर एकेडमी एक ऐसा भारतीय थिएटर ग्रुप है जो कहानियों को सिर्फ दिखाता नहीं है, उन्हें जीता है. यहाँ हर मंचन एक जीवंत दुनिया है जहाँ अभिनय, संगीत, रोशनी, आवाज और सबसे ऊपर भावनाओं की सच्चाई दिखाई देती है. और इसी के उपलक्ष में आज हम इस थिएटर से जुड़े दो लोगों को आपसे मिलवाएंगे और जानेंगे कि असल में क्या सच में आज के दौर में थिएटर जिंदा रह सकता है या नहीं. और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं थिएटर की, तो आज का जो सवाल है वो भी इसी से जुड़ा रहेगा. आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये कौन सी मूवी है. आपको हल्का सा बता देती हूँ, तो ये कहानी है थिएटर से जुड़ी एक ऐसे समय की, एक ऐसे इंसान की जो कि अपने पैशन ढूंढने को निकलता है. ये जो लड़का है ये कॉर्सिका नाम की एक जगह पर जाकर एक लड़की से मिलता है और वहाँ से इनकी कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है. धीरे धीरे ये जो मुलाकात है ये उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ एक्टिंग, थिएटर, कल्पना और भावनाएँ मिलकर उसे खुद से मिलाती हैं. तो अब आपको अंदाज लगाना है कि ये फिल्म कौन सी है. एक और हिंट आपको दे देती हूँ, इसी फिल्म में एक गाना है जिसका नाम है तू है कोई और. आपको बता दूं कि इस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाया है, हाल ही में उनकी एक नई फिल्म भी आई है. तो चलिए, मैंने आपको खूब सारे हिंट्स दे दिए हैं, अब आपको मुझे अपना जवाब भेजना है 04397997677 पर. और भी खूब सारी बातें हम आज के कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया में आखिर क्या कुछ चल रहा है. प्रस्तुत है 25 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. सबसे पहले बड़ी खबर दक्षिण अमेरिका से. वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है. राजधानी काराकास में कई इमारतें ढह गई हैं जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इन भूकंपों की तीव्रता 7.1 और 7.5 मापी गई है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. राहत और बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं. वहीं लोग डर के कारण घरों से बाहर सड़कों पर ही डटे हुए हैं क्योंकि आफ्टरशॉक्स का खतरा बना हुआ है. ऐसे में अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें. इस्लामिक स्टेट से कथित रूप से जुड़ी एक ऑस्ट्रेलियाई महिला जो कई सालों से सीरिया में फंसी हुई थी, अब
3: देश वापस लौट सकेगी। ऐसे में गृह मंत्री टोनी बर्क ने कहा है कि उनके अनुरोध के बाद टेम्पररी एक्सक्लूजन ऑर्डर को आगे जारी नहीं रखा जा सकता है। हालांकि वापसी के बाद उस पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी रखी जाएगी। उसे अपनी लोकेशन, काम और पढ़ाई की जानकारी देनी होगी और किसी भी फोन या सोशल मीडिया इस्तेमाल से पहले 24 घंटे का नोटिस देना होगा। एएसआईओ प्रमुख माइक बर्जेस ने कहा है कि एजेंसी उसकी वापसी पूरी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के बाद ही करेगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमरीका और नाटो के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो प्रमुख मार्क रटे के साथ रक्षा खर्च को लेकर मतभेद जताया है। ट्रंप ने कहा है कि कई यूरोपीय देश अभी भी अपनी रक्षा जिम्मेदारियों में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं और अमरीका पर अत्यधिक निर्भर हैं। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की हाउसिंग मार्केट पर। अब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था से बड़ी खबर आ रही है कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार ब्रिस्बेन आने वाले वर्षों में सिडनी को पीछे छोड़कर देश का सबसे महंगा शहर बन सकता है, खासतौर पर यूनिट्स के मामले में। डोमेन के अनुसार 2027 तक ब्रिस्बेन में मीडियन यूनिट प्राइसिंग लगभग $8,93,000 तक पहुंच सकता है, जबकि सिडनी में ये करीब $8,55,000 रहने का अनुमान है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन इंक्रीज, निवेशकों की बढ़ती रुचि और सीमित रेंटल सप्लाई इसकी बड़ी वजह हो सकती है। आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में चल रही हलचल के बारे में। दो टील इंडिपेंडेंट सांसद जैली स्टेगल और एलेग्रा स्पेंडर ने मिलकर एक नई सेंट्रिस्ट पार्टी की घोषणा की है, जिसका नाम है कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया। खास बात यह है कि ये पार्टी किसी एक नेता के बिना काम करेगी, यानी एक साझा नेतृत्व मॉडल के तहत आगे बढ़ेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसी एएसआईओ अपने टेरर थ्रेट वार्निंग सिस्टम की समीक्षा कर रही है। एएसआईओ प्रमुख माइक बर्जेस का कहना है कि मौजूदा सिस्टम अब बदलते सुरक्षा हालात को पूरी तरह नहीं दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा प्रोबेबल खतरे का स्तर जनता के लिए वास्तविक जोखिम को कम करके दिखा सकता है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने एक फ्रांसीसी महिला और उसके 5 बच्चों को 10 साल से अधिक कथित कैद से मुक्त कराया है। महिला को एक बंद कमरे में पाया गया, जहां से उसके एक बेटे ने भागकर मदद मांगी थी। पुलिस का कहना है कि महिला ने वर्षों तक शारीरिक और मानसिक शोषण झेला है। उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिवार को फ्रांस वापस भेजने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। आइए बात करते हैं खेल जगत की। सोकरूस टीम को बड़ा झटका लगा है। कोच टोनी पॉपोविक ने पुष्टि की है कि जेकब इटालियानो चोट के कारण अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। आपको बता दूं कि पहले ही मैट लेकी घायल हैं, जिससे टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासकर पैरागुआ के खिलाफ आने वाले मुकाबले से पहले। आइए बात करते हैं भारत की। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975 से 1977 की इमरजेंसी को शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी ऐतिहासिक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि ये पहली बार है जब कक्षा 9 के स्तर पर इमरजेंसी पर अलग चैप्टर जोड़ा गया है। आपको बता दूं कि ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत ने हाल ही में इमरजेंसी लागू होने के 50 साल पूरे होने को याद किया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। अमेरिका के सीनेट में वॉर पावर बिल्स पारित होने के बाद अब ईरान के खिलाफ किसी भी आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी नबील हसन की ये रिपोर्ट।
4: अमेरिका के सेनेट ने एक वॉर पावर बिल्स पारित किया है, जिसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकना है। यह ऐसे समय में हुआ है जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ईरान की परमाणु निरीक्षण यानी न्यूक्लियर इंस्पेक्शन के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर मतभेद बने हुए हैं। वहीं यूनाइटेड नेशंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते फंसे हुए नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया है। इस बीच यूनाइटेड नेशंस की एक जांच में पाया गया है कि इजरायली अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन में बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया है। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। ये बिल 50 के मुकाबले 48 वोटों से पारित हुआ है। इससे पहले ऐसे 9 प्रयास किए गए थे, लेकिन पहली बार इस तरह का बिल कांग्रेस के दोनों सदनों से मंजूरी हासिल करने में सफल रहा है। बिल के तहत राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ किसी भी नई सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस की अनुमति लेनी होगी। सेनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से जुड़ी कार्रवाइयां अमेरिका के लिए काफी महंगी साबित हुई हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए।
5: मैडम प्रेसिडेंट, फॉर इयर्स Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the cost to the American people go up.
4: चार रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। वो उन बढ़ते हुए कंजर्वेटिव नेताओं में शामिल हो गए हैं जो युद्ध और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ किए गए हालिया समझौते को लेकर चिंता जता रहे हैं। ये प्रस्ताव एक कॉन्करेंट रेजोल्यूशन है जिसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती और ये कानून की तरह लागू भी नहीं होता। लेकिन हाउस कमेटी ऑन फॉरन अफेयर्स के डेमोक्रेटिक सदस्य ग्रेग मीक्स का कहना है कि वो सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रंप प्रशासन कांग्रेस की इच्छा का पालन करे। डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज का कहना है कि पेंटागन द्वारा युद्ध की लागत को कवर करने के लिए हाल ही में अरबों डॉलर की मांग करना इस अभियान की विफलता को दर्शाता है।
6: Their reckless and costly war of choice has been a disaster for the American people. And the notion that they'll come up to Capitol Hill to try to get an additional $80 billion to continue to waste taxpayer money on an endless war in the Middle East that Donald Trump promised he wouldn't start but would stop is beyond reckless.
4: सेनेट का ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब तेहरान और वाशिंगटन के बीच ईरान के परमाणु निरीक्षण यानी न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस को लेकर मतभेद जारी हैं। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि देश के बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने दावा किया है कि ये मुद्दा उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में शामिल नहीं था जिस पर अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।
7: I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities to defend ourselves, our country would have been plundered and destroyed. We shall never compromise or negotiate with anyone about our missile capabilities.
4: जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को परमाणु निरीक्षण करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है, उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर तेहरान इस समझौते से पीछे हटता है तो वो बातचीत खत्म कर देंगे।
8: And we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
4: ये मतभेद पिछले हफ्ते 18 जून को हुए US ईरान डील के बाद सामने आया है, जिसके बाद 60 दिनों की बातचीत की अवधि शुरू हुई थी। इस समझौते के तहत ये तय किया गया था कि ईरान कम से कम 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को बिना किसी शुल्क आवाजाही की अनुमति देगा और 30 दिनों के भीतर सभी समुद्री यातायात को पूरी तरह सामान्य करेगा। अब यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की है कि एक इवैक्यूएशन योजना शुरू हो चुकी है जिसके तहत 11,000 फंसे हुए नाविकों यानी सेलर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित निकाला जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता स्टेफनी डुजारिक ने कहा है कि यह अभियान ईरान, ओमान, यूनाइटेड स्टेट्स और मैरिटाइम इंडस्ट्री के सहयोग से चलाया जाएगा।
9: The IMO Secretary General Arsenio Dominguez said IMO secured the necessary safety guarantees and thoroughly verified the conditions for safe navigation to support these operations. The operation marks a significant step towards alleviating the humanitarian impact of the crisis on thousands of seafarers who've endured months of uncertainty, months of unrestricted movements, and mounting welfare concerns.
4: United Nations ke ek swatantra aayog ki report mein Gaza yuddh shuru hone ke baad se Palestine mein bachchon ke khilaf hui ghatnaon ki jaanch ki gayi hai. Report mein paya gaya hai ki mare gaye logon mein lagbhag 30% bachche the. Halanki Israeli sarkar ne in nishkarshon ko kharij karte hue report ko deeply flawed yani gambhir roop se galat bataya hai aur kaha hai ki isme Hamas ki crude ranneetiyon ko nazarandaz kiya gaya hai. जांच आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास मुरलीधर का कहना है कि सबूत बहुत स्पष्ट हैं और इन्हें नकारा नहीं जा सकता। उनके अनुसार अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच 20,000 से अधिक बच्चे मारे गए हैं और 44,000 से अधिक बच्चे घायल हुए हैं।
10: The use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare, and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children.
4: SBS News की Angelica White की ये report SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
2: तो दोस्तों इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आए थे नबील हसन और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का लेकिन कहीं मत जाइएगा लौटकर हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे सुनते रहें SBS हिंदी
11: Your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
12: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें
13: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है sbs.com.au/guide पर जाएं डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर
12: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे हर मंगलवार 8:30 SBS और ऑन डिमांड पर
14: SBS Audio.
12: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
15: यही ज्यादा लिया. चुनबा हाल में.
16: SBS Chill.
17: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
18: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
19: Far from the partisan politics.
12: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
14: sbs.com.au/audio.
2: तो दोस्तों ब्रेक के बाद SBS हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:18 और वैसे तो मेरे किसी भी शो में आप देरी से नहीं आते हैं लेकिन अगर आप आज के कार्यक्रम में ज़रा देरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप हमारा कोई भी अंश या कार्यक्रम SBS हिंदी की वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर सुन सकते हैं इसके अलावा हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं तो यदि आपने हमें वहां पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लें क्योंकि खासकर इंस्टाग्राम पर हम एक नए अंदाज में कई बार वीडियो के माध्यम से या फिर तस्वीरों के माध्यम से आप तक ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर की खबरें लेकर आ रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की तो लोवी इंस्टीट्यूट के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चरलिज्म के लिए समर्थन कम हो रहा है ऐसे में हमने बात की कृष्णदेव सिंह रावल जी से जो औपचारिक एंटी रेसिज्म वर्कशॉप्स आयोजित करने वाली संस्था थर्ड कल्चर ऑस्ट्रेलिया के संस्थापक हैं और समझा कि इस घटते समर्थन के पीछे का कारण क्या हो सकता है
20: लॉ इंस्टीट्यूट के एक नई रिपोर्ट में यह पाया गया है कि मल्टीकल्चरलिज्म ऑस्ट्रेलिया में अब उत्तरान पर आ रहा है। लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म ऑस्ट्रेलिया के लिए उतना अच्छा नहीं है, जहां 2024 के इसी सर्वेक्षण में पाया गया था कि 90% लोगों को ऐसा लगता था कि सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी है। अब ऐसा सिर्फ 73% लोग मानते हैं, और उसमें भी 55% का ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय प्रवासन यानी इमिग्रेशन यानी माइग्रेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णदेव सिंह रावल जी, जो कि एंटी रेसिज्म में प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के स्पेस में काफी काम कर रहे हैं, और थर्ड कल्चर ऑस्ट्रेलिया नाम की एक संस्था के संस्थापक हैं। तो सबसे पहले कृष्ण, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी में।
16: नो थैंक यू, नमस्ते।
20: कृष्ण, हम समझना चाहते हैं कि लो इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है मल्टीकल्चरलिज्म पर, इस पर आपका क्या कहना है?
16: आई थिंक मैंने जो देखा वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप डाटा में देखो तो स्टैट्स कहते हैं कि 3 in 10 पीपल यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज से बोर्न है, और फिर आप एक और पीढ़ी डालते हो 1 extra generation, then 1 in 2 people have at least one parent born overseas. So हम रियलिटी देखो तो हम बहुत डाइवर्स है, वी आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वी आर वेरी वेरी मल्टीकल्चरल। तो इट इज इन अ वे इट इज डिसहार्टनिंग के वो रेट है वो आई गेस गोन डाउन ऑफ हाउ पीपल व्यू डाइवर्सिटी इंक्लूजन, बट आई थिंक आप देखो द वर्ल्ड अभी बहुत डिफिकल्ट फेज में है, वी हैड पेंडेमिक, आई थिंक उसका अभी भी इफेक्ट है, और फिर इकोनॉमिकली हाउसिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, और फिर इज अ लॉट ऑफ वॉर्स हैपनिंग, और फिर AI भी नया है, तो पीपल को डर है कि मेरी जॉब जाएगी, ये जाएगी। सो आई थिंक जब आप देखते हो इकोनॉमिक प्रेशर होते हैं, आप फिर देखते हो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, आई थिंक पीपल यूजली व्हाट माय इंटरप्रिटेशन इज कि वो देखते हैं कि How do I preserve myself? मैं किस कैसे बचा सकता हूँ? And I think देखोगे ये रेट में को 90 से almost 73 people view diversity, inclusion, multiculturalism अच्छे लाइट में। I think that is a result of the world that we're living in। अब दुनिया में देखो सब जगह conservative जा रहे हैं। अमेरिका देखो, इंडिया देखो, a lot of places are going a bit more conservative। And I think when push comes to shove, of सब pressures आते हैं, सबको खुद का घर protect करना है। And I think the easiest thing to do Australia में जब ये सब चीज चल रही है, तो देखो कौन माइनॉरिटी है, कौन यहाँ के नहीं है, कौन हमारे जैसे नहीं देखते, कौन मेजोरिटी में नहीं है, और इट्स वेरी इजी टू पॉइंट द फिंगर्स एंड बी लाइक वो ज्यादा प्रॉब्लम्स है।
20: तो कृष्णा, एक और चीज आती है कि आप एंटी रेसिज्म में प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। पिछले 12 महीनों की अगर बात करें, जब हमने एंटी रेसिज्म का एक पूरा वेव देखा पिछले साल इसी समय के इर्द गिर्द, उस समय से अब तक लेकर के आपने जिन लोगों को ट्रेन किया है उनके किस तरीके के सवाल रहे हैं, या आपके अनुभव में क्या लोगों के सवाल बदले हैं ट्रेनिंग के दौरान?
16: पीपल्स परसेप्शन जब ट्रेनिंग में आते हैं, 2-3 साल पहले बहुत एक्साइटेड थे, वी वांट टू लर्न क्या करना चाहिए, क्या रेसिज्म होता है। अब आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस, इज अ बिट मोर पॉलिटिकली चार्ज्ड। हम जब बोलते हैं, हम कंटेंट करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो वो ज्यादा सोचने लगते हैं, बिकॉज आप घर में जाओ, आप सोशल मीडिया में जाओ, न्यूज में देखो, तो अभी रेसिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म बहुत नेगेटिव लाइट में है। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट्स चेंज इज जो मेंबर्स आते हैं हमारी ट्रेनिंग्स में, वो डबल सोर्स होते हैं, they're not fully sold on the idea. Those 3 saal pehle people aa jaate hain, wo learn karte hain, wo very excited hote hain. Ab wo thoda darte hain ki main karu ke na karu, main bolu ke na karu. So that's the first change that I've seen. Aur dusri cheez hai ki jo people aate hain, wo they all ask the what is the political situation, main karu main job place mein, should I speak up, should I not do it? Oh, I think I'm seeing more and more people would have defeated feel karte hain ki racism hai, exist, but main kuch nahi kar sakta, I can't do anything about it. आप पोलिटिकली देखो, इट्स नॉट इन अ गुड लाइट। मैं इफ आई स्पीक फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, मैं इंडियन हूँ, और यू नो राइट नाउ इफ यू गो ऑन सोशल मीडिया, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। इट्स वेरी वेरी कॉमन, पीपल थिंक इट्स ईजी टू मेक जोक्स ऑन अस, टू मार्जिनलाइज द कम्युनिटी। सो आई थिंक द इंडियन कम्युनिटी, आई नो इन पर्टिकुलर, वो मेंशन तो नहीं करेगी स्ट्रगल, बट दे फील इट। द ट्रांजिशन इन माई ट्रेनिंग्स हैज बीन, वो डाउट करते हैं कॉन्टेंट को, वो डाउट करते हैं कि ये सही चीज है कि नहीं, हमको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, हमको कदम लेना चाहिए कि नहीं, हमको रेसिज्म आपको डिफीट करना था, आप यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू टेक दैट स्टेप। आई थिंक नाउ एंड नाउ पीपल आर मोर हेजिटेंट, क्योंकि पॉलिटिकली नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की बैकिंग नहीं है, और द होल राइट नाउ DNI और डाइवर्सिटी इंक्लूजन इज नॉट सीन इन अ गुड लाइट, एंड द स्टैट्स हमने आज आपने वो बोले वो बैक दैट करते हैं।
20: कृष्णा, गैप कहाँ दिखता है आपको? आपको क्या लगता है कि कहाँ है वो गैप जिसकी वजह से ये जो फीलिंग है, जहाँ अब ये भावना आने लग गई है कि हम बोल नहीं सकते, हम महसूस कर रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते, ये कहाँ से आ रही है?
16: आई थिंक आप सोशल मीडिया में देखो, आप daily conversations dekho we see certain political parties that very strongly oppose main clear kar oppose nahi wo blame karte hai ki ye migrants ke liye hua hai ye refugees wajah se hua hai ye itna zyada nayi population hai itna zyada that's the reason why we're having some issues so I think when that is becoming normalized regular sunte hai dekhte hai then it gives people who might be on the edge who they wouldn't be so confident to come out and say a bit more rapid things or come out and be a bit more vocal because they see politicians saying it they see it on the news they see certain celebrities use it so I think that's becoming the issue of it's becoming more normalized if I was facing racism with another person more comfortable nahi hoge I should speak up kyunki tv mein to ye dekh raha hu that they're blaming me to main kahan se bol sakta hu especially aap layers mein dalo ki aap आपकी सिटीजनशिप नहीं है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो इतना ज्यादा वक्त नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में तो आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो व्हेन यू ऐड ऑल दीस लेयर्स इन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू स्पीक अप
20: कृष्णा ऐसे में आपके अनुसार और खासकर जब इस तरीके के सर्वे सामने आते हैं तो किस तरीके से जिसको कहते हैं ना कि ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज एक करी जा सकती है या किस तरीके से एक मिडिल ग्राउंड पर पहुंचा जा सकता है
16: वी हैव टू डेवलप सम एम्पैथी आई थिंक As leaders, as I guess someone working in the space, we have to give space. These opinions ho sakte hai. People can feel this way. Wo jo aap soch rahe ho, feel karte ho, so we can't tell that's a bad feeling. Ye mat socho. So I think first step is saying, okay, where is this thinking coming from? Ye kahan se aa rahi hai? Second is to build empathy. Ke, are they misinformed? So I think understanding those things. And the next step, I think it's very important for leaders like myself or the political leaders to make sure we have strong leadership. It's never been more important. Ke, We need to have strong leadership. Yeah, this is correct. This is wrong. Just make that vocal. And as jahan bhi ho sakta hai, make it as clear that whatever is happening in the streets, jahan bhi ho sakta hai, in social media, on TV, hum nahi accept karte hai.
20: आपको बताते चले कि ये सर्वेक्षण किया गया था वन नेशन की नेता पॉलिन हैंसन नेशनल प्रेस क्लब को दिए गए संबोधन के कुछ दिनों बाद ही इसके बाद प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि दरअसल सांस्कृतिक विविधता ऑस्ट्रेलिया की ताकत है
0: diversity as a nation is a strength you know the fact that in the last month yesterday Sunday I was at an Assyrian function it was a wonderful function in southwestern Sydney should that be allowed to happen
20: लेकिन सेनेटर हैंसन ने इस बात का सीधा-सीधा जवाब देते हुए ये कहा था कि इस समय ब्रिटेन में चल रही पॉलिटिकल अपहीवल यानी राजनीतिक उथल-पुथल सीधे-सीधे कल्चरल डाइवर्सिटी का ही नतीजा है।
21: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore. They can't fly the flag, and I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy is in the toilet actually.
20: इस सितंबर में पॉलिन हैंसन के प्रथम संसदीय संबोधन के 30 वर्ष होंगे उन्होंने उस संबोधन में भी मल्टीकल्चरलिज्म को खत्म करने की बात कही थी
22: I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished.
20: नए सर्वेक्षण ऐसा दिखाते हैं कि हो सकता है अब इस भावना को समर्थन मिलने लगा हो रेनी कॉफी उस समय एक किशोर थे जब पॉलिन हैंसन ने अपना प्रथम संसदीय संबोधन दिया था आज वे खुद एक सांसद हैं और कहते हैं कि पॉलिन हैंसन की पॉलिसीज देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है
23: I'm in federal parliament and I can't believe 30 years on we're still talking about Pauline Hanson we're still talking about one nation that's very upsetting to me and so many members of our community what I would say is with Pauline Hanson and one nation's rise in the polls and what we've seen in the community I would ask people to have a look at her track record to look at her track record and one nation's track record over the last 30 years in parliament they have consistently voted against higher wages for workers rights they've argued for a divisive Australia.
20: इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत इस खबर को SBS न्यूज से आपके लिए प्रस्तुत किया कैमिल बियांकी और SBS हिंदी से विशाली जैन ने
3: तो
2: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ऑस्ट्रेलिया में मल्टी कल्चरलिज्म को लेके जो एक डिबेट है वो शुरू हो गई है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं आप मुझे लिख भेज सकते हैं, नंबर है 0439799767। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर आपको मिलवाऊंगी नाट्य दर्पण जो थिएटर ग्रुप है उसके कुछ सदस्यों से। सुनते रहें SBS हिंदी।
1: SBS South Asian plays

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए. SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ. sbs.com.au/food पर जाएं. पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए. सातों दिन 2400 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें.
2: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है. एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है. सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें. बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट. SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए.
3: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: Channel 33 par SBS Food, jo parosta hai sabse swadisht jagahein. Sthani aur antarashtriya bhojan mein bade naam. SBS Food, Channel 33 par 2400 ghante.
4: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है. sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजातरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. तो आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा है. मैंने पूछा है कि ये कौन सी फिल्म है. ज़रा ध्यान से सुनिएगा. तो ये जो कहानी है, ये है एक लड़के की जो खुद को खोज रहा है, अपनी पहचान, अपनी आवाज़ और अपनी असली पैशन की तलाश में. ये लड़का कॉर्सिका नाम की एक जगह पर एक लड़की से मिलता है और वहाँ से कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है. धीरे धीरे ये मुलाकात उसे एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाती है, जहाँ अभिनय, थिएटर, कल्पना और भावनाएं मिलकर उसे खुद से मिलाती हैं. क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ? उसी फिल्म में एक गाना भी है, तू है कोई और. बताएं मुझे अपने जवाब. नंबर है 04397997667. और जब तक आपके जवाब मेरे पास आ रहे हैं, आइए आपको मिलाती हूँ कुछ लोगों से. तो नाट्य दर्पण इंडियन थिएटर एकेडमी मेलबर्न का एक ऐसा भारतीय थिएटर ग्रुप है जो सिर्फ नाटक नहीं करता बल्कि कहानियों को जीता है और लोगों को जोड़ता है. यहाँ ये मंच पर अभिनय के साथ साथ वर्कशॉप्स, संगीत, लाइट, साउंड और ढेर सारी क्रिएटिव एनर्जी भी साथ चलती है. नाट्य यानी रंगमंच और दर्पण यानी आयना, ऐसा मंच है जो जिंदगी को उसके असली रंग में दिखाता है. इस खास प्रस्तुति के पहले हिस्से में मैं आपको मिलवाऊंगी इस संस्था के संस्थापक और OAM सम्मानित मंदार वैद्य से और जानेंगे इस थिएटर ग्रुप की कहानी, आने वाले धमाकेदार शोज के बारे में और थिएटर की आज की प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस के बारे में. तो आइए सुनते हैं. दोस्तों, मेलबर्न की मल्टीकल्चरल पहचान को मजबूत बनाने में कला और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. भारतीय समुदाय के बीच रंगमंच को जीवंत बनाए रखने का ऐसा ही प्रयास है नाट्य दर्पण इंडियन थिएटर एकेडमी. पिछले 2 दशकों से अधिक समय से ये संस्था न केवल भारतीय भाषाओं और कहानियों को मंच पर ला रही है बल्कि नए कलाकारों को भी अवसर प्रदान करती है. थिएटर के माध्यम से संस्कृति यानी कल्चर, आइडेंटिटी और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले इस सफर के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं नाट्य दर्पण के संस्थापक और रंगकर्मी मंदार वैद्य जी. इसके अलावा इसी थिएटर ग्रुप से जुड़े एक कलाकार नमन अरोड़ा से भी हम बातचीत करेंगे, जो हमें बताएंगे कि कैसे थिएटर के माध्यम से आत्मविश्वास तालियों में बदल जाता है और क्यों थिएटर आज भी सोशल मीडिया की दुनिया से कहीं ज्यादा लाइव और जिंदा अनुभव है।
6: SBS हिंदी को भी हमारा तहे दिल से नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
5: तो मंदार जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नाट्य दर्पण की स्थापना के पीछे आपकी क्या सोच थी?
6: नाट्य दर्पण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, यहाँ हिंदी नाटकों की एक कमी थी जब हमने शुरू करा तब, तो उन हिंदी नाटकों की एक नींव रखना और उनके निर्माण के माध्यम से भारतीय रंगमंच को बढ़ावा देना और ऐसा एक रंगमंच तैयार करना कि जहाँ सारे जाति धर्म वर्ग के लोग सारी सीमाओं को तोड़कर एकजुट हो जाएं। और यही मतलब हम कर पाए हैं कि आज तक हमारी संस्था में 4 साल के बच्चों से लेके 80 साल के बुजुर्गों तक पिछले 10 सालों से 50 से अधिक नाटकों के माध्यम से हम ये निर्माण कर चुके हैं और आज तक 150 कलाकार, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, संगीतकार, गायक और डांसर्स, ऐसा एक बहुत प्यारा सा एकजुट परिवार हम बना सके हैं।
5: बिल्कुल मंदार जी, अभी आपने बताया कि नाट्य दर्पण को 10 साल हो जाएंगे, तो ऐसे में आप अपना एक खास शो भी लेकर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को उस शो के बारे में कुछ बताएं।
6: तो अभी 10 साल की सालगिरह के कारण इसका नाम ही हमने दशकोत्सव रखा है और इसमें हमने क्लासिक मतलब यानी कि कुछ पुराना कुछ नया ऐसे दोनों का एक बहुत रंगीन सा एक संगम इसमें किया है। तो पहला शो हुआ 20 तारीख को, उसमें एक बच्चों का नाटक था और जिसका नाम था दिस टाइम यू डिसाइड क्रीमिया, और शादी सिलेबस नाम का एक बहुत ही हिलेरियस कॉमेडी एक दीर्घांकी नाटक था जो 1.25 घंटा चला। और आने वाले 27 तारीख को जो है वो हम चैंडलर थिएटर में एक बहुत ही सशक्त और इमोशंस का पावर हाउस जिसे कह सकते हैं, हमीदा बाई की कोठी नाम का एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो संगीत और तवायफ और कोठी संस्कृति के बदलते दौर का एक मार्मिक और क्लासिक वो एक उदाहरण है जिसको लिखा है श्री अनिल बर्वे जी ने और जिसको निर्देशित किया है और जिसमें मुख्य भूमिका भी निभा रही हैं श्रीमती नम्रता शर्मा जी। इस साल दशकोत्सव में 56 प्रतिभाशाली कलाकार, 6 डायरेक्टर्स और 6 नाटककार, ऐसा एक अनोखा संगम हमें देखने को मिला। एक हटके एकदम जिसको कहते हैं कि क्लासिक एपिटोमी ऑफ इमोशंस एंड प्योर ड्रामा, ये स्टेज पे 8 किरदार उनको बखूबी निभाएंगे।
5: जानना चाहूंगी कि जो नाट्य दर्पण है वो क्या केवल मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट के लिए एक मंच है या फिर ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद का भी माध्यम बन रहा है?
6: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ये हमारा मंच जो है वो एक सामाजिक और नाटकीय दोनों का एक मिलाप है। सामाजिक ऐसे कि हम हमेशा ऐसा हम ऐसे सोच रखते हैं कि हम यहाँ पे अच्छी जिंदगी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम जो भी करें, हमारे नाटक करें, उसमें से समाज को कुछ वापस दे। तो मनोरंजन के साथ साथ पिछले 10 सालों में हमने $32,000 से अधिक की धनराशि मतलब जुटाई है, वी हैव रेज्ड फंड्स
5: जी।
6: और दशकोत्तर के लिए दशकोत्सव जो हमारा इस साल का है, फॉर दैट अलोन वी हैव रेज्ड $7,000 जो फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन फाउंडेशन, ये हमारे चैरिटी पार्टनर्स हैं, इनके पास जाएगा और वो बहुत ही अच्छा हाथों में जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन फाउंडेशन के हमारे दोस्त जो हैं वो जनरली चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के लिए कोई बड़ा इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो और सामाजिक इसके लिए मैं बोलता हूँ और एक एक दृष्टिकोण से कि हम हमेशा नाटकों के माध्यम से एक अच्छा कुछ विचार, एक वैचारिक मंथन हम लोगों में लाना चाहते हैं क्योंकि आजकल 30 सेकंड और 40 सेकंड के रील में अटके हुए हमारे सारे लोगों के दिमाग है ना
5: जी।
6: मतलब उससे कोई भी परे नहीं है, ना आप है ना हम है, तो उससे बाहर निकलने के लिए ये जीते जागते किरदारों को देखने के लिए उनकी जो जो उनके इमोशंस हैं उनको एक्सपीरियंस करने के लिए लोग आ सकते हैं. और थॉट प्रोवोकेटिंग नाटक थे सारे. मतलब हमीदा भाई की कोठी भी एक बहुत, लोग जब जाएंगे वहां से तो एक बहुत सोच, एक एक एक सोचना पड़ेगा लोगों को कि क्या ये सिर्फ हमीदा भाई और उनकी कोठी और उनकी जीवन के बारे में ही नाटक है कि इससे आगे चल के ये कुछ वैचारिक मंथन भी करता है हमारे दिलो दिमाग में.
5: जी बिल्कुल मंदार जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि ये रीलों का एक दौर है, तो खासकर जो युवा पीढ़ी है, और अगर मैं जेन जी या जेन अल्फा की बात करूं, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस पीढ़ी ने अनुभव की ही नहीं है. यू नो, सब कुछ इतना ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गया है, इतनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी आ गई है, तो ऐसे में जहाँ नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया, क्लिकबेट, इन माध्यमों से हम मनोरंजन ले रहे हैं, तो आने वाले समय में लाइव थिएटर की प्रासंगिकता, यानी जो रेलेवेंस है, वो कितना रह जाएगा?
6: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल दुनिया जो है ना, जो सोशल मीडिया हम जो देखते रहते हैं सारे, वो अक्सर इंसान उसी के पास खींचा चला जाता है क्योंकि उसकी एक आदत सी लग जाती है, उसकी एक लत सी लग जाती है ना. क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस आप पड़े रहो और वो रील्स आते जाते हैं. और उसको जो इंग्लिश में जो कहते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब एक क्षणिक आनंद की जो अनुभूति दिलो दिमाग पर छा जाती है कुछ ना करते हुए 30 सेकंड के अंदर. तो ये सारे से हटकर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिनको वही अनुभव कुछ दूसरे काम से मिले. और नाटक, नाटक के वर्कशॉप्स, नाटकों की तालीम, ये जरूर एक ऐसा रंगमंच है कि जहां पे लोग ये सोशल मीडिया तो भूल ही जाते हैं मगर अपने आप को भी भूल जाते हैं. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि नाटक इज ए मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, यानी ये एक आध्यात्मिक एक एक्टिविटी है. अभी टोटल हमारी वॉलंटियर के लिस्ट में इस शो के लिए 56 तो सिर्फ एक्टर्स हैं ना, फिर डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सारे मिला के 92 है. और ये सब एक साथ जब पसीना बहाते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं, यू नो, इट्स लाइक ए लिटिल फैमिली गेट टुगेदर एवरी वीकेंड. और ये ऊर्जा और ये सामूहिक जो एक विचार है और ये जो सबको एक साथ लेकर आता है ना, वो ये तो किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं मिलता.
5: बिल्कुल मंदार जी, आपका आज SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
6: आपको भी फिर से हमें ये स्वर्णिम मौका देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार. तो आपको भी और आपके श्रोताओं को भी हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि आप आइए और हमारे कुटुंब में हमारा ही एक भाग बन जाइए.

तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये अंश पसंद आया होगा और इसका दूसरा भाग आप तक जल्द लेकर आऊँगी। लेकिन आज के मेरे सवाल का जवाब आपको बता देती हूँ। आज मैंने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये कहानी है एक लड़के की जो खुद को खोज रहा है, अपनी पहचान, अपनी आवाज़ और अपनी असली पैशन के तलाश में। ये लड़का कॉर्सिका नाम की एक जगह पर एक लड़की से मिलता है और वहाँ से इनकी कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। धीरे धीरे ये मुलाकात उसे एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाती है जहाँ अभिनय, थिएटर, कल्पना और भावनाएं मिलकर उसे खुद से मिलाती हैं। आपको पता लगाना था कि ये कौन सी फिल्म है और मुझे सिर्फ एक ही सही जवाब आया है, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। तो अगर आप मुझे एक संदेश भेज सकते हैं तो अपना नाम मुझे ज़रूर बता दें। और फिल्म का नाम है तमाशा, ये गाना उसी फिल्म से है। और आपको बता दूं कि हिमलता पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लिखती हैं नमस्ते भव्या जी एंड योर टीम, वेरी नाइस प्रोग्राम, और बता रही हैं कि वो पॉलिन हैंसन के जो बयान हैं मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर उनसे खास अग्री नहीं करती हैं। कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में अभी है नहीं और वी आर गिविंग अ लॉट टू ऑस्ट्रेलिया। ये उनके निजी विचार हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो हिमलता जी आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ पीयूष जी जुड़ गए हैं और लिखते हैं नमस्ते भव्या जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पीयूष जी, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ये प्यारा सा गाना आप इंजॉय करें।

पर वह अवार्ड लेने पहुंची और इसकी जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी क्योंकि बहुत ही इमोशनल ये एक मोमेंट था। आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले उनकी जो हियरिंग है उसमें ज़रा सी प्रॉब्लम आ गई थी और अब वो सुन नहीं सकती हैं। तो देखिए ये कितनी ज़िंदगी कितनी अलग है कि जिसने पूरी ज़िंदगी हमें गाना सुनाया, एक पल आया जहाँ वो खुद ही अब ढंग से नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन उनको ये अवार्ड मिला और सोशल मीडिया पर हर जगह जो नई जनरेशन है, पुराने लोग हैं, उन्होंने अलका याग्निक को याद किया। तो आज ये गाना उन्हीं के लिए।

0: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
1: SBS Chill पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें। SBS Chill सुनने के लिए SBS Audio ऐप पर जाएं। Inside SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर। SBS Sport खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
2: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए। 7 दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
3: SBS Kick Off,
4: a new music station celebrating football anthems from around the world.
5: It's time for Africa.
3: It's live now
4: on DAB Radio, the SBS Audio app,
3: online and SBS On Demand.
1: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो जो गाना मैंने अभी

0: जाया था उसको लेकर मुझे खूब सारे मैसेजेस आ गए हैं जो कि जल्द पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाती हूँ एक खास मेहमान से। तो ब्रेक से पहले मैंने आपको मिलवाया था नाट्य दर्पण के संस्थापक के साथ, जिनका नाम है मंदार वैद्य, और कई सालों से वो ऑस्ट्रेलिया में हिंदी और मल्टीकल्चरल थिएटर को लेकर आ रहे हैं। और अब इस अंश के दूसरे हिस्से में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ आर्टिस्ट नमन अरोड़ा से, जो बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ थिएटर करने की ठानी और भारत से बाहर रहकर अपने पैशन को फॉलो किया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थिएटर की, और इस खास प्रस्तुति के पहले हिस्से में हमने आपको मिलाया था नाट्य दर्पण के संस्थापक और OAM विजेता मंदार वैद्य से। आइए इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और अब आपको मिलवा रही हूँ इस थिएटर ग्रुप से जुड़े कलाकार नमन अरोड़ा के साथ। नमन हमारे साथ अपना नाट्य दर्पण से जुड़ने का अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अपनी 9 to 5 करने के साथ साथ उन्होंने अपने पैशन को परस्यू करने का ठाना।
1: हमेशा से मैं थिएटर और ये ड्रामा इन सब में रहा हूँ, स्पेशली जब मैं बड़ा हो रहा था स्कूल में एंड कॉलेज में बैचलर्स में। एंड उसके बाद जब हम 2018 में मैं यहाँ पे आया, ऑब्वियसली बिजी हो गए फ्रॉम काम धंधा एंड यू नो जॉब एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें छूट ही गई, विच मीन्स आर्ट वॉज नेवर इन द पिक्चर। पर उसके बाद 2023 व्हेन एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, मेरी पीआर हो गई, सब कुछ हो गया, जॉब अच्छी थी, स्टेबल था एंड एवरीथिंग, तो फिर अब अंदर की जो होती है ना एक चुल होती है कि भाई अब अलग कुछ अलग मसाला चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है उसी को वापस उठाते हैं जो हमेशा पहले करते थे। फिर मैंने सोचा कि गूगल करा कि मैंने कहा कि अगर हिंदी में ही हो जाए तो इट्स गुड कि आई कैन बी मोर कनेक्टेड टू द कल्चर एंड ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस भी है, आदत भी है, मज़ा भी आता है। तो गूगल करा तो ऑब्वियसली नाट्य दर्पण का नाम ऊपर आया, मैंने रिव्यूज वगैरह पढ़े, उनके फेसबुक पे गया, देखा, समझा, मैं कहा नहीं साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है। और ऐसा भी नहीं था कि वो नया नया था, इन 2023 उसमें लिखा था कि 7-8 साल हो चुके थे, तो मैंने कहा ठीक है दिस इज एन एस्टेब्लिश थिंग, लेट्स ट्राई इट आउट। तो वहाँ पे फॉर्म वॉर्म भरा एंड देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, एंड देन मंदार जी का मेरे पे कॉल आता है जस्ट टू नो कि मैंने क्यों करा है, व्हाट इज माय इंटेंशन, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, एंड ऐसे करके कितना टाइम मैं दे सकता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, मोर लाइक ब्रीफिंग प्री बिफोर दे टेक एनीबडी। एवरी टाइम दे टेक समबडी, किसी को भी जब इसमें लिया जाता है नाट्य दर्पण में, आपको एक वर्कशॉप में डाला जाता है जिससे आपका सारा थिएटर का जो बेसिक्स होता है ना, फ्रॉम स्टेज प्रेजेंस टू हाउ लाउड, वॉइस रेगुलेशन एंड एवरीथिंग, वो बेसिक्स सिखाए जाते हैं एक 2-3 दिन की वर्कशॉप में, जिसके अंदर कोई अगर एक बिगिनर जिसने कभी स्टेज पे पैर भी नहीं रखा है उसका भी इतना क्लियर हो जाता है फंडामेंटल्स कि ही फील्स कॉन्फिडेंट इनफ टू शोकेस हिमसेल्फ। सो एनीबडी हु गेट्स इनटू नाट्य दर्पण एज एन एकेडमी, ज्वाइन देम, उन्हें ये सब एक वर्कशॉप अटेंड करनी होती है जो मंदार जी बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं, सिखाते हैं। तो मैंने पहले एक वर्कशॉप अटेंड करी, उसके बाद सिंस देन अब 3 साल हो चुके हैं और मैं आई थिंक 4-5 अलग अलग प्रोडक्शन का पार्ट रहा हूँ। देखो कितनी बड़ी कमिटमेंट है, आप अपनी जॉब करते हो, अपनी सब कुछ करते हो, वीकेंड पे आपको टाइम निकालना है, वीकडे में टाइम निकालना है, जूम मीटिंग एंड ऑल दैट, मैं तो रहता भी नॉर्थ में हूँ, तो फॉर मी ट्रैवलिंग इज ऑल्सो 1.5 आवर वन साइड, बट एवरी टाइम आई डू समथिंग एंड इट्स सो मच फन, बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत लोगों से मिलने को मिलता है, एक परिवार वाली फीलिंग आती है, और करते टाइम ऐसा लगता है कि यार ये कितना एग्जॉस्टिंग था बट फन था। और मैं सोचता हूँ कि यार दिस टाइम आई डू इट, नेक्स्ट टाइम आई टेक अ ब्रेक बिकॉज इट इज टू मच ट्रैवलिंग, टू मच टाइम एंड एवरीथिंग, बट देन इतना मजा आता है कि नेक्स्ट टाइम हैपेंस एंड लाइक आई वांट टू डू इट अगेन। एंड दैट्स व्हाई मैंने देखा है कि जो लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेस के अंदर, ड्रामास के अंदर, वो पिछले 10-10 साल से लगातार काम कर रहे हैं, और ये सब करना डूइंग योर जॉब विद नो सेल्फिश मोटिव, देयर इज नो फाइनेंशियल बेसिकली थिंग दैट यू आर परस्यूइंग हियर, कि आप कर रहे हो अपने शौक के लिए कर रहे हो, अपने पैशन के लिए कर रहे हो, अपने जिनके बच्चे हैं वो बच्चे मैनेज कर रहे हैं, जिनकी दो दो तीन तीन जॉब्स है वो मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट मैनेज कर रहे हैं, तो ये सब एक आउटसाइड ऑफ देयर लाइफ दे डूइंग समथिंग एज अ मसाला। जब आप कोई प्ले देखते हैं या थिएटर देखते हैं वो देखने में बहुत आसान लगता है कि क्या है, वो 200 डायलॉग हैं, 10 लोगों ने बोल दिए, क्या ही फर्क पड़ता है, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन एंड जितना भी काम लगता है उसके अंदर, फ्रॉम योर लाइटिंग यू नो टू योर साउंड, टू योर मेकिंग श्योर स्टेज पे प्रेजेंस हो, उसके बाद कोई वर्ड कोई लाइन भूल जाए तो क्यूज भूल जाए, ये सबको मैनेज करना, इनके लोगों से कोऑर्डिनेट करना, प्लस जब भी कोई प्रोडक्शन होती है उससे 3 महीने पहले एवरी वीकेंड, अगर 8-10 दिन है तो 8-10 दिनों का मेक श्योर उनका टाइम कोऑर्डिनेट हो, हर वीकेंड किसी के घर मिलना या कोई जगह बुक करना, लाइक ऑल ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स बहुत बहुत एफर्ट।
0: तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो कार्यक्रम था वो पसंद आया होगा, और ये दोनों पॉडकास्ट आप हमारी SBS हिंदी की वेबसाइट पर जाकर फिर से सुन सकते हैं। जाने से पहले आपको बता दूं कि खूब सारे संदेश आए हैं तो जल्दी से पढ़ देती हूँ। तो आज के सवाल का सही जवाब एक ही इंसान ने दिया था जो है कुणाल जी। लिखते हैं, थैंक यू एक्चुअली फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग फ्रॉम तमाशा एंड द फर्स्ट आंसर वॉज फ्रॉम मी एज वेल। आई वॉज ऑल्सो जस्ट वंडरिंग दैट could we have a day or a show just to dedicate it to Alka Yagnik ji, and so that you know she has recently won the legendary award and she's a legendary singer। to ye sandesh hame bheja hai kunal ji ne, to aapke sandesh ke liye bahut bahut shukriya, aur dekhiye aapne socha aur maine aapka gana baja diya। aur ek aur sandesh mujhe aaya hai Vrajesh ji ka, jo likhte hain, hello bhavya ji, thank you for playing this song, aaj aapne meri sham bana di, best wishes to the entire SBS टीम। इसके अलावा एक और संदेश मुझे आया है जफर जी की ओर से, जो कि लिखते हैं, भव्या जी वेरी गुड प्रोग्राम, कीप अप द गुड वर्क। तो आप सभी के प्यारे प्यारे संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ऑन एयर आते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं और आप हमारे साथ मैसेजेस के माध्यम से संवाद करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको हमारा साथ कैसा लग रहा है, हमारी रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं। और इसी के साथ आज बातें करते करते जो समय है वो बीत चुका है, से हमारी मुलाकात होगी यहीं पर शाम के 5 बजे। लेकर आऊंगे आपके लिए कुछ बढ़िया सी खबरें और खूब सारे गाने। आप जुड़े रहें SBS हिंदी के साथ, और जाने से पहले ये गाना सुन के जाएं।

असूलों पर जहां जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

बहार की, वो जा रहा है कोई शब-ए-गम गुजार की। वीरा है मैं कदा खुम्मो सावर उदासी,

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के।